अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

ताली ताक धुम ताक ताली ताक धुम ताक धाला आम ताक धुम ताक ताली के नेतू ताक नाक ताक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक जम ताली ता जग ताली ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के ने ताक धुम ताली ता जग ताली ता जन जाने को कुदारी ता कुदारी के ने जम ताली जग

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ई मेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

बहुत माशरी मोहम्मद रफी जिनके लिए मैं दीवाना बना आउट फिल्म आओ प्यार करें एंड गाना द फिल्म कॉलेज गर्ल एंड डुएट फ्रॉम मोहम्मद रफी एंड लता जी.

आतिफ असलम की आवाज और स्टेशन उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हम लोगों की वेबसाइट आप देखें ujala.nl। नेमोंस ओवरऑल में और डाउनलोड कर ले उजाला के ऐप जो है।

तुझ में रब दिखता है, रूप कुमार राठौड़ की आवाज। रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से गीत को आप सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों। और आपके साथ हम भी सुन रहे हैं।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

सोनू निगम और अलका याग्निक, इन दोनों से आप गीत को सुने। फिल्म का नाम रेफ्यूजी। उजाला रेडियो पर इसी फिल्म से इन्हीं दोनों की आवाजों में एक और गीत पेश है।

मेरे हम सफर मेरे पास आ। अलका याग्निक एंड सोनू निगम, इन दोनों से गीत को आप सुने।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: तू देख ले यार brazzafest.nl.
1: Now I don't want to go back. Fall in love with she. I come down to Trinidad and see a sweet lady.
0: Programa jo rahega lamba chau rahega. Be aapke hum bataila. कौन कौन बेंचेस खेलेगा ऑल टॉप फॉर्मेसिस सब जबर जबर फॉर्मेसिस जो है नीदरलैंड में सब वहां पे रहेगा एक्ट अख्तर अलकार एक को ना मिसी हाईगा ससेंदर अलमा ऑल टॉप फॉर्मेसिस दी फर्दीनन हम ऑफ सोन स्टेज पे स्टैन प्लस ऑफ एस के मेन स्टेज पे वहां पे रहेगा दुई गो हाल दो एरियास हाल इन जोन हाईगा बहुत लंबा चौड़ा बड़का स्टेज ओमन रहेगा भी और एगो ट्वेदा हाल जोन हैगा वो रहेगा एक्ट फूड कोर्ट ओकर मतलब हैगा फूड लाउंज कोर्ट हमें चाहे बोले के तू वहां पे लाउंज कर सकेगा तू वहां पे अपन खाना पीना खाइए और तू कुर्सी तफरा तोड़ खाती रहेगा वहां पे जहां पे तू रुस्तक से बैठ के इवन चेस खाई सकेगा अपन परिवार के साथ मैं जफरिंदर डोंट मिस दिस हियर विल यू एक्ट बाय साइड विद द होल फैमिली Het is natuurlijk een familiefestival. Dat houdt in dat iedereen welkom is. De kinderen zijn welkom, maar ook Aji Aja, Nani Nana. En Mousi, Mousa, Pua, Pupa. Wie heb je allemaal nog meer? Ze zijn er allemaal. Sapkoi welkom, Heiga. Doe leken aan je gewoon. Ja, toch? Zaterdag 19 en zondag... na 19 jaar, zaterdag 29 en zondag. 30 augustus. Take a look. Toe dikle jurte op een brassafest.nl. B-R-A-S-A fest.nl. Eén woord, brassafest. Toe dikle. Zij is er dus bij. Roshana Balgobind is erbij. Maar hij is er ook, hoor. Hij is er zeker bij. All right, there we go.

YouTube भी सुनिए अच्छा लाइव ऑन स्टेज ई देखी के बा यार व्हाट इज दैट दैट इज एन नहीं दैट इज एन फॉरगेट नंबर दिस ई वाली पे हमें ना चाहिए जाए के ना तो ई वाली पे वेल ई वाली वेल देखिए तो इवेंट्स कैसे गनवा शुरू हो जाएगा मंथ ई वाली आपके हम वेल सुनावे भांगीला या नेचुरल देयर वी गो साइजर भाई साइजर रोग भाई सुन ले

Allemaal op één festival. Het grootste Hindoestaans festival. Isalke, 2026 keer. Den Haag शहर में, आपके शहर में यार, Den Haag शहर में. हम लोग आएला Den Haag. Den Haag हम आएला. तू भी आइए. और ये लड़कियां के नाम हम आपके बता दें? नहीं तो तू भी सोचिए के गावेगा यार, हम ना जानेला. सुन ले, सुन सुन.

संजय जोधा यस महनित अंद्रेकर एक वे नीत हमने नहीं मुकेश वाली एगो सुनाई लिखी ना मा सो मते नहीं जफा मुकेश एं जफा संजय जोधा एं जफा लेडी संजना परफेक्ट हम सब सुनाई लत ओके आख्तर अलकार हीर ऑफ यू वर्ल्ड या इट गेबर्ट हियर अलमान लाइव टरवेल आई कैन इट प्रेजेंटेरन बेन वर्डन द लीडजेस फॉर माय क्लार गेसेट ब ब ब ब ब हमार लाइफ मैन जो तुझको ना पाऊं here in the jingle machine groups tu jaane to modern hum log baat hai dus we kunnen dit soort dingen direct doen

Jason J. Jota, live on stage. Brasa Fest पर यार, कम ये उखनीते? Well, हम वहाँ पे रहबे, और ये गनवा जा आएगा, boy, दखाई खवोन dancer. हम काम धंधा वहाँ छोड़ के, हाई खवोन dancer. दबे निकोप the dance floor, यही तो होग.

लाइफ ऑन स्टेज ब्रासा फेस्ट पर आप सुनेंगे ये गीत मैथ संजय जो था एक्सक्लूसिव के साथ यस मैथ सन आई म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव लाइव ऑन स्टेज वाओ वट मोमेंट गाट दैट वर्दे हम तो के बिलीव करिला हिला देखो हम लोग यार दनहा शहर हम लोग हिला देखो ही।

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रे को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनके तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। इतवार का शाम का प्रोग्राम पांच तारीख जुलाई का प्रोग्राम सोमवार 5 जुलाई करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुके हैं। 3:07 खुद में रखा लमाओ। यहां से आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। मैं हूं सुभाष सिंह गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को शाम का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। वेलकम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। और हमारे प्यारे सुनने वालों, अगर आप कोई भी बैठक गाना सुनना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 20 3 9 0 0 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं।

ये धन वालों की दुनिया है, निर्धन का भगवान। औसन से स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के वास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए आमेर शहर में, जहां पर इस वक्त भाई मनोज मुंगार।

0: शाबा चाहे बाजी लगाओ हमसे बरोबर ना होइए चाहे बाजी लगाओ। और इस तरह से राकेश यानकरन के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एंड अब की बार देखा जाए का पहला ऑन द आइसल में देखा जाए वहां पर श्रीमान
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
0: श्रीमान गलेन प्रोग्राम को बैठ करके सुन रहे हैं।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला।

शाबाश शाबाश, जिंदगी है क्या, उड़ती हुई हवा यार। इस तरह से स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और इस गाना को मांग करने वाला था कपालांध आइसल का रहने वाला श्रीमान ग्लेन गंपत जी। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, और इस बार देखा जाए भैया धीरज सीताराम प्रोग्राम।

शाबाश शाबाश बोले धोबिया तू मर जाइए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, देवानंद गातो जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे बैठे गाना का प्रोग्राम है। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 0 8 0 8 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं। तो चलिए द यंग टाइगर ऑफ बैठ गाना और खांजर के विशाल हीरा के वंश में, और इस गानों को मांग करने वाला है बेनी रामशरण।

अरे शाबाश शाबाश हमार रनिया रे हमार रनिया रे, तू बता दे सज्जे बतिया ऐसा सीधे यंग टाइगर ऑफ बैठ गाना विशाल हीरा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जय आओ मेरे शहर में जहाँ पर इस वक्त माला मुंगार जी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम

0: कोई जाए ना जाए। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खासकर के मोतीमाला भोला सिंह जी के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और देखा जाए तो प्रोग्राम को भी आराम से बैठ करके सुने इसकी दाम में किशन रंजना शिवम और शिव, और गाना जो मांग किए हैं और इस गाना पेश है आप तीनों के लिए इसकी दाम में।
1: कैसे जीरा
0: अरे भाई
1: सन्मान
0: आई बॉय चलन दे

हल शाबाश शाबाश बालापन से और निश्चित तरह से सुजल उमराव के अवांश में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। चलिए बात करेंगे मैं जहां पर श्रीमान राजन खुनखुन जी

शाबाश, देखो कैसी आई है बहार, झूम झूम के। और इस तरह से देवानंद गातो के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए होफदोर्म शहर में, जहां पर इस वक्त आनंद मंगरू प्रोग्राम को बैठ करके सुने। आई

शाबाश शाबाश वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रही आज इतवार सोंदा 5 जुलाई का प्रोग्राम है। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो अब की बार गाना देखा जाए इस गाना को मांग करने वाला है देखा जाए तंत आनी दन हाँ शहर में बैठ करके

0: शाबाश शाबाश यार सुजल सुजल उमराव के आवाज में
1: रूठन वाले कैसे मना।
0: और चलिए अब की बार गाना को मांग करने वाली बरेडा शहर में जहां पर गायत्री प्रोग्राम को बैठकर उसने खुद में रख गायत्री और ये गाना तुम्हारे नाम

रे आजा रे वो सनम कृष्णम शेदी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं बैठ गाना हंगामा वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम और देखा जाए लाइव स्पेन शहर में जहां पर इस वक्त सानू जी भी प्रोग्राम को बैठकर

वैसे जिसका प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं, इतवार का शाम का प्रोग्राम आप लोग के नाम उजाला रेडियो का प्रोग्राम आमसराम शहर से हम बना रहे हैं आप सभी के लिए वैसे जिसका प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। और चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखा जाए अलमेरे में हमारे समधी भाई परिवार सौदागर प्रोग्राम को बढ़कर सुने और बनाए से को तीता तीता डोक्सा आई बोल।

वेल आज तरह से राइमोंड एंड राकेश की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने वालों। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो फियानन शहर में, जहां पर इस वक्त श्रीमान रामसुख जी प्रोग्राम को बड़ी करके सुने हैं।

वेल शाबाश शाबाश। और इस तरह से मोतीमाला भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और देखा जाए अलमेरे में टोनी इसरी भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं।

के और चले नहीं जाना इस तरह से कृष्ण छेदी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए अमसराम उस दौर में और वो भी भाई हैं गोपी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम और भैया अर्जुन बिहारी।

0: से।
1: वल शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने सुनील राम सुंदर जी के आवाज में। एंड अब की बार गाना को मांग करने वाला है भैया सुंद अप कैनत अपने भैया सत्तार के लिए। और ये गाना पेश है स्वर्गीय सनातन जी के आवाज में वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा।

तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हैं, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुने बोलो, और बैठक गाना का प्रोग्राम जो आप लोग बैठ करके सुने हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम।

शाबाश शाबाश पिया, चलो ना नगरिया हमारी अवसर से स्वर्गीय सनातन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एंड अब की बार गाना कुमांग करने वाली है फैंस बोल्डर में, देखा जाए एमी के लिए गाना पेश है।

शाबाश शाबाश नाथाम मोरी भैया मैं तो जाऊंगी मदीना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और वो भी खास करके स्वर्गीय रामदेव चैतू जी के आवास में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए सुतमेर में, जहां पर संता जी प्रोग्राम को बैठ कर सुने और इस गाने को मांग किया है।

शाबाश यार, मेरे दिल की घरे करे टिक टिक एंड गुड़िया तेरी याद में मारा। और इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, तो इस गाना को मांग करने वाली है फैंस ऑफ ऑलवर के रहने वाली मीला कट्टू सिंह। गाना को मांग किया है, एक बार फिर से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में, और ये गाना सुनेंगे। गुड़िया के चल ले जवनिया और गए ले अमुआ

शाबाश शाबाश यार, गोड़िया के चरले जवनिया एंड अमुआ बीने जाए। और इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और हमारे प्यारे सुने वालों, यहाँ तक आप लोग सुने प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम और आशा की आज का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों को पसंद आए हुए होंगे। हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड शुक्रिया। आप लोग अपना इतवार का शाम और रात्रि मोई से बनाइए, मोई से बिताइए, मोई से रहिए, मोई से खाइए, मोई से पिए, जो भी करिए प्यार से करिए यार, जो भी कहना है आज करिए, कल का वादा ना करिए, कल तू ना देख लेना हम देख ले। अपने आप की जरूर से मोई से ख्याल कीजिए, आप लोग मोई से रहिए। खिदमत की आपका दोस्त सुबह शिव गोविंद, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज।

और एक मंजिल राही दो, बोलो फिर प्यार न कैसे हो। फिल्म संजोग लता एंड मुकेश जी, उजाला रेडियो है ये।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हो।

हजार बार देखो ना ना हजार बार देखो, क्योंकि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म का नाम चाइना टाउन। उजाला रेडियो पर

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

में कब मैं जुबान से फिर जाऊँ, ना जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाऊँ, मैं बंद के आंसू खुद अपनी नज़र से गिर जाऊँ, खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं मेरे नसीब में, ऐ मेरे दोस्त तेरा प्यार नहीं। द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस, किशोर दा की आवाज़ आप अभी सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। मिले जुले संगीत में आज का इस एक घंटे का पैगाम में मैं आपको भी लोकल सिलेक्शन सुनाने वाला हूँ। द इंडियन टेम्पटेशंस के साज पर इस बार आप सुनेंगे विम डमड़ी साहब की आवाज में, मैंने चांद देखा है झील मिलाती सितारों में, कोई फूल देखा है मुस्कुराती बहारों में, विम डमड़ी।

सुन लो बेकरारी का ये फसाना, जहां वालों मैंने चांद देखा है, झील मिलाती सितारों में, कोई फूल देखा है मुस्कुराती बहारों में। द इंडियन टेम्परेशन के साथ पर विम डमरी की आवाज़ में आपने भी सुने हैं यू आर के माध्यम से उजाला रेडियो का पैगाम है। मिले जुड़े संगीत आपकी खिदमत में अर्ज है, इस बार सुरों का बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब।

मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मेरे दिल का राजदार मिला। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर और मुकेश चांद माथुर की आवाज़, यानी कि द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ आप अभी सुने हैं। उजाला रेडियो का पैगाम में मिले जुले संगीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस बार प्रोग्राम में है एक और लोकल सिलेक्शन। गायक है शहीद वाजिद हुसैन, ऐ मेरे दिले नादान।

शहीद वाजिद हुसैन की आवाज में। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से ना घबराना, एक दिन समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से ना घबराना।

हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किया जा रहे हैं। आप जिस हालात में भी हमको सुन रहे, बीमार, दुखित या तो लाचार है, आपकी खुशी के वास्ते भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है। और आप हर एक सुनने वालों के मनोरंजन के वास्ते हम स्टूडियो में हाजिर है, लेकर कुछ मिले जुले संगीत, कुछ मिक्स मार्क सॉन्ग्स। उम्मीद है आप प्रोग्राम से भी एंजॉय कर रहे हैं।

उमंगों की निखार है, आंखों में है रोशनी। सुरो का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज। स्टेशन है यूआर उजाला रेडियो। फोन का नंबर 02-409-08-07। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते।

मैंने द क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले और सुरों का बादशाह रफी साहब की आवाज में फिल्म का नाम नीला आकाश तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। उजाला।

ना चुगाओ मुस्कुराओ ओ साईवानी साईवानी मोई मोई मैशे सुघर लड़की तो गुस्से को छोड़ो वादा ना तोड़ो ओहो लीफ मैशे बिम डमड़ी की आवाज स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो साईवानी मोई मोई मैशे स्टे ट्यून प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। गुलाम नाना जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल आप सुने, और गुलाम अली की आवाज़ में अब आप एक गज़ल को सुनेंगे। बहुत ही मशहूर गज़ल है जो बार बार आप ज़रूर सुन चुके होंगे। अगर इस प्रोग्राम से जो गीत और गज़ल की दुनिया प्रोग्राम है, अगर आप इससे और मज़ा लेना चाहें तो आपको एक राय देता हूँ। वो ये है कि घर के चिराग जो है थोड़ा कम कर दे आप, रेडियो की आवाज़ जो है थोड़ा ज़ोर कर दे आप, और आंखें बंद करके और तब मज़ा लीजिए गीत और गज़ल की दुनिया उजाला रेडियो पर।

बहाना याद है गुलाम अली साहब से आप गजल को सुने और अब हिस्सा लेंगे फरीदा खानम जी पेश है। शायद आप जाना चाहेंगे तो गुजारिश है इस गीत सुनने के लिए और इस गीत के सुनने के बाद आप फैसला कीजिए कि आप जाएंगे या यहीं पर सुनेंगे।

वाह वाह, फरीदा खानम से आप गजल को सुने, और अब इस गजल के सुनने के बाद आप बात मेरी तो इतनी मान ले कि आज जाने की जिद ना करो। अब हिस्सा लेंगे मेहदी हसन, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। इस प्रोग्राम को सजा रहे हैं इन लोगों की मीठी मीठी आवाज, कलाकारों की मीठी मीठी आवाज़।

चाहूंगा। मेहदी हसन की आवाज में गजल को आप सुने और गीत और गजल की दुनिया जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एक फनकार के बिना बनाना नामुमकिन है, और वो है पंकज उदास जी। पेश है

और मान लिया ना आप कि पंकज उधास के बिना ऐसा प्रोग्राम बनाना नामुमकिन है, और इस गीत और गज़ल की दुनिया प्रोग्राम में अब हिस्सा ले रही है चित्रा सिंह।

मुझे एक लतीफा याद आ गया है। इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई, तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा। लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई, तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, इधर तो जल्दी है और उधर तो आहिस्ता आहिस्ता। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने। अब हिस्सा ले रही है आशा जी। उजाला रेडियो है ये।

jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूर योर मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl।

ये उजाला रेडियो है, आपको स्वागत है फिर एक नया प्रोग्राम सुनने के लिए गीत और गजल की दुनिया। प्रोग्राम बनाया जा रहा है हर एक इतवार की रात हमारे जरिए, और इसमें बातें हम कम करते हैं और आपको सुनाते हैं अच्छे से अच्छे गीतों और गजलें। तो आज भी इत्मीनान से बैठ जाइए और लुफ्त उठाइए पहली गजल से, जो कि पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में।

बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, इसमें डूब जाने के जी चाहता है। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने।

दिन रात दुआओं में चंदन दास की आवाज में इस सुंदर गजल को आप सुने। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में। और अब रेशमा, हाँ रेशमा हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में।

इस प्रोग्राम से और लुफ्त उठाना चाहें आप तो घर के चिराग जो है कम कीजिए और रेडियो की आवाज़ और जोर।

मुस्कुरा कर मिला करो हमसे, कुछ कहा और कुछ सुना करो हमसे। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने और उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। अब हबीब वाली मोहम्मद साहब से आप सुनेंगे।

आंख का नूर हूं, ना किसी की दिल का करार हूं। हबीब वली मोहम्मद की आवाज में आप सुने, और अगली गजल अशोक खोसला की आवाज में होंगे।

मिसाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स जो है वो तो शहर को छोड़ दिया। अशोक खोसला की आवाज़ में गीत या तो गज़ल आप सुनें।

जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, मेहदी हसन की आवाज में गजल आप सुने। प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, उजाला रेडियो है ये।

सांसों की महक, तेरे बदन की खुशबू आज भी याद है, हम आज भी नहीं भूले। अशोक खोसला की आवाज में इस गजल को आप सुने, और गीत और गजल की दुनिया के इस भाग का ये पहला भाग में अब एक आखिरी गजल आप सुनेंगे, लेकिन उदास मत होना, अभी कुछ ही देर में हम मिलते हैं लेकर के प्रोग्राम का दूसरा भाग।